0: 涉嫌间谍活动在俄被捕一事提出的交涉。消息说，俄驻日大使向日方指出，日本情报部门拉拢包括在俄合法注册的日本记者在内的人员，开展所谓合作，搜集涉密信息，企图破坏俄罗斯国家安全与国防能力，这种情况不可接受。俄罗斯主管机关此前已多次制止此类图谋，该案侦查工作将严格依照俄罗斯法律开展。俄联邦安全局13号发布通报说，在萨哈林州逮捕了日本北海道新闻的一名记者，理由是这名日籍记者涉嫌从事间谍活动。据日本经济新闻15号报道，日本首相高市早苗14号在国会答辩中暗示，可能在今年年底修订国家安全保障战略等安保三文件时，调整其中有关无核三原则的表述。
1: 据报道，高市14号在众议院预算委员会会议上回答质询时表示，日本政府在政策方针上仍在坚持无核三原则，目前正在推进安保三文件的修订工作，其中关于无核三原则的具体表述仍有探讨余地。日本经济新闻报道称，这暗示高市虽然可能不会改变无核三原则本身，但可能重新审视安保三文件中所体现有关这一原则的政府方针。无核三原则指不拥有、不制造、不运进核武器。安保三文件中的日本国家安全保障战略明确写道，坚持无核三原则的基本方针今后不会改变。报道指出，高市在就任首相前长期主张修改无核三原则中不运进核武器的原则，与自民党共同组成执政联盟的日本维新会在今年6月提出的有关安保三文件修改建议中，也主张对不运进核武器原则进行符合现实情况的探讨。此外，自今年7月以来，日本防卫大臣小泉进次郎多次在公开场合提出应不设禁忌地讨论核武器相关政策。上述一系列动向持续引发日本国内对于高市政府核政策转变的担忧。
0: 近日，印度食品价格持续上涨。据印度国家统计局公布的最新数据，刚刚过去的9月份，印度食品通胀率高达7.74%，这给普通家庭的日常开支带来压力。
2: तो उनका सब्जी का एक-एक भाव देख के मैं चौंक गया। तो जैसे हम सब्जी पहले लेने आते थे, तो वही भाव में बहुत सारी सब्जियां मैं लेके जाता था। अभी एक-एक रेट ऐसे लगे हुए हैं कि मतलब बहुत महंगाई बढ़ गई है। घर चलाना मुश्किल है।
3: हाँ, बढ़ तो गए हैं। सारी चीज के दाम बढ़े हुए हैं। सब्जियां भी सारी महंगी हैं। तेल वगैरह भी महंगा है। चीनी का रेट भी देखो महंगाई होता जा रहा। महंगाई तो चरम सीमा से बाहर है।
4: 洋葱是印度老百姓餐桌上必不可少的食材。今年九月，印度洋葱价格同比涨幅达到了108%。
5: पहले तो 40-30 ऐसे ही कुछ था, अभी तो फिलहाल शायद प्याज 60-70 ऐसे ही कुछ हो गए लगभग। जो मजबूरी तो है ही अभी, मजबूरी से सब कोई ले ही रहा है, चाहे 80 हो चाहे 100 हो।
4: 飞涨的价格不仅让消费者感到了压力，依靠日常销售维持生计的小商贩也感叹生意越来越难做了。
6: ये जो एक दो किलो लेने वाला था, अभी एक किलो ले रहा है。जो आधा किलो लहसुन लेने वाला था, अभी एक पाव ले रहा है, यह तो काम थोड़ा ढीला है, पहले तो सही चल रहा था।
0: 针对近日印度国内食品价格持续上涨的现象，印度经济学家表示，气候异常、生产成本攀升等多重因素造成了印度近日的物价波动。
7: We are in an El Nino year, and erratic monsoon. I won't say less monsoon, but erratic monsoon. We have seen some places receiving excess rainfall, and some are, you know, really deficient. And as a result, the food production, especially the main food crop, rice or paddy, that has production could suffer this year.There are expectations the current expectations are that production could be about 6.5-7% lower than what it was last year. The wheat crop is also gone down by about 4%.
4: 除了气候因素，印度能源和化肥高度依赖进口， 国际市场价格波动

0: 行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策会议的重要参考资料。美联储下次货币政策会议将于10月27号至28号举行。随着近日发布的通胀数据超预期，市场对美联储本月底再次加息的预期升温。
1: 近日，印度食品价格持续上涨。据印度国家统计局公布的最新数据，刚刚过去的9月份，印度食品通胀率高达7.74%，这给普通家庭的日常开支带来压力。
2: तो जैसे हम सब्जी पहले लेने आते थे तो वही भाव में बहुत सारी सब्जियां मैं लेके जाता था अभी एक एक रेट ऐसे लगे हुए कि मतलब बहुत महंगाई बढ़ गई है घर चलाना मुश्किल है
3: हाँ बढ़ तो गए हैं सारी चीज के दाम बढ़े हुए हैं सब्जियां भी सारी महंगी हैं तेल वगैरह भी महंगा है चीनी का रेट भी देखो महंगाई होता जा रहा महंगाई तो चरम सीमा से बाहर है
0: 洋葱是印度老百姓餐桌上必不可少的食材今年九月，印度洋葱价格同比涨幅达到了108%。
4: पहले तो 40-30 ऐसे ही कुछ था, अभी तो फिलहाल शायद प्याज 60-70 ऐसे ही कुछ हो गए लगभग। जो मजबूरी मजबूरी तो है ही अभी, मजबूरी से तो सब कोई ले ही रहा है, चाहे 80 हो चाहे 100 हो।
0: 飞涨的价格不仅让消费者感到了压力，依靠日常销售维持生计的小商贩也感叹生意越来越难做了。
5: ये जो 1-2 किलो लेने वाला था, अभी 1 किलो ले रहा है。जो आधा किलो लहसुन लेने वाला था अभी 1 पाव ले रहा है यह तो काम थोड़ा ढीला है पहले तो सही चल रहा था
6: 哥斯达黎加近日启用了一座可容纳5100名囚犯的超级监狱，以加大打击有组织犯罪的力度。据报道，这座监狱是该国安全级别最高的监狱，位于首都圣何塞附近，最大收容量相当于该国在押人数的20%。首批囚犯将于10月底转入该监狱。哥斯达黎加政府希望通过建造新监狱等措施，重新确立国家对监狱系统的控制权。据报道，哥斯达黎加近年来凶杀案激增，多数凶杀案据称与犯罪集团间争夺贩毒路线和毒品市场有关。
1: 当地时间15号，受邻国印度尼西亚烟霾影响，东帝汶空气污染严重，学校自当天起停课3天。近期，印度尼西亚多地林火和烟霾持续发生，烟霾跨越国境，扩散至马来西亚、新加坡、东帝汶、菲律宾等周边国家。印尼每逢干燥季节便常发山火，今年受厄尔尼诺现象影响，火情尤为严重。此外，专家指出，印尼多地烧荒开垦增加了山火风险。
7: 您正在收看的是《朝闻天下》。
1: 现在是早晨的6:54，欢迎您继续收看中央电视台正在直播的早间新闻节目《朝闻天下》。现在我们来连线中国气象局天气预报主持人魏丹。魏丹，早上好。
6: 魏丹早。
8: 二位主持人早上好，观众朋友们早安。
6: 最近感觉这个北方的不少地方早晚时段都需要穿上羽绒服才行啊。那么具体情况来和大家说一下吧。
8: 的确是这样。最近北方多地呢频繁受到冷空气的影响，气温震荡下行，尤其是东北多地的降温最为明显。那城市当中，我们看到哈尔滨昨天它的最低气温仅有-0.3度，这也是当地今年立秋之后首次最低气温跌破了0度。预计今后几天冷空气将会接连登场，陆续影响北方大部以及长江中下游这一带，以上地区将会迎来降温、大风以及雨雪天气。那今天呢，在冷空气和降水的影响之下，降温主要集中出现在西北以及华北黄淮这一带，不少地方的最高气温降幅将会达到4到10度。冷空气在带来降温的同时，也会给西北多地带去4到5级的偏北风，阵风将会达到6到8级，大风呢将会加速我们身体热量的流失，因此提醒北方的朋友们要注意防风保暖。主持人，
1: 您刚刚提到冷空气会带来雨雪天气哈，再给我们介绍一下今后几天雨雪的分布情况吧。
8: 好的，那预计呢，从今天夜间开始，暖湿气流将会有明显的增强。明天强盛的南风甚至会把水汽一路的带向 东北地区，再加上西边冷空气的配合，降雨将会出现明显的增强。此外，在内蒙古的东北部、黑龙江西北部，因为气温低，还会出现明显的降雪。今天在甘肃东部、宁夏、内蒙古河套地区，以及陕西中部和东南部、山西南部、河南北部和南部